सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिंदास अब सुनिए

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास
2: कूसम
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या पर ये बात है
2: कूसम

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM
1: बिंदास
2: कूल
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या बात ये बात है
2: कूल सॉन्ग

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 10

एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

your happiness frequency. Radio Olive Park. Song of the Year.

खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: हाय रेडियो ऑलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह. स्टे ट्यून्ड.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

की एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम?
2: नाम। Money follows, man.

0: पूरे देश को
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण, रेडियो ऑलिव 106.3।
3: Olive Sonor Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय रेडियो ऑलिव, 106.3 लिसनर्स, दिस इज शाहरुख खान।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट.
2: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
3: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
1: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
4: This bar khatra kab kaise aur kahan se aayega, batana mushkil hai.
1: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
4: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
1: Overseas released by Zee Studios.

your happiness frequency. Radio Olive Park. Song of the Year.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
2: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग, ज्यादा सेविंग्स।
4: लुलु, where the world comes to shop.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो बिंदास

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ. साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल.
2: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक.
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए.
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड भी.
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपर मार्केट.
3: लुलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
4: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता.
5: नीना गुप्ता,
4: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
3: ऑलिव

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत.
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर. नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा, कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600+ पार्किंग स्पेस भी. सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज.

your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो बिंदास

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: हाय, मैं हूँ सारिका. आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट.
2: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
3: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
1: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर.
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
1: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है.
1: Overseas release by Zee Studios.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

What is mobile number? What is your smile number? What?

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
2: मैं बेटे के लिए justice चाहिए.
3: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
1: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
1: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinemas 2nd October.
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
1: Overseas released by Z Studios.
5: आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, तेरी चुम्मन पिछली संग वर्गा, है किरना दे विच नशा जहा, किसे छीमे सप दे डंग वर्गा, आज दिन चढ़िया

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ. साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल.
0: लुलु फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक.
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए.
0: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड भी.
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलु हाइपरमार्केट.
2: लुलु, where the world comes to shop.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: Main Anil Kapoor, Radio Olive, you're with us.
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार.

यार देखो, यू तो वीकेंड के आने से लाइफ में ना फन का तड़का लग जाता है, लेकिन मेरे टेक शो में जो है टेक्नोलॉजी में लगता है फन और मस्ती का तड़का। हाँ जी, आपकी कशिश आ चुकी है द टेक शो लेकर आपके लिए 106.3 रेडियो ऑलिव पर। और आपकी वीकेंड्स को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस टेक शो में हम टेक्नोलॉजी की तो बात करेंगे लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। तो आर यू रेडी, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि माहौल जो है वो काफी टेक्नोलॉजी वाला होने वाला है। सो इस टेक्नोलॉजी की बातचीत को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जल्दी से हाई हेलो गुड इवनिंग जो है वो ड्रॉप कर दीजिए 3311063 पर। बाकी आपकी वीकेंड की गपशप जो है वो भी जारी रखेंगे साथ साथ में। फिलहाल जो है टेक्नोलॉजी के बारे में अगर कुछ भी फन फैक्ट है, कुछ भी इंटरेस्टिंग जो है जो नया हुआ है पिछले हफ्ते में, अगर वो न्यूज आपके पास है तो जल्दी से मुझे भेज दो, मैं जो है यहाँ पर अपने इस एपिसोड में उसे फीचर करूंगी। 3311063 इज द नंबर, सेव कर लो। एंड फिलहाल वॉल्यूम बढ़ाकर अमेजिंग वाले गाने आपकी कशिश के साथ इंजॉय करते जाओ और कहते जाओ जियो पिंदा।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत.
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गरफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर. नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा, कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी. सिर्फ 4 दिन गरफा शॉपिंग डेज.
4: रेडी टू लर्न, टू प्ले, ग्रो.
5: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ.
6: मिल्क, चीज, योगर्ट, लेमनी
5: एग, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस.
7: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
8: Hey.

यार देखो, यू तो आई एम अ सर्टिफाइड फैशन गर्ली, मतलब मुझे जो है फैशन बहुत ज्यादा पसंद है एंड ड्रेसअप करना बहुत पसंद है, यू नो कपड़ों को एक दूसरे से मिसमैच करना काफी पसंद है, लेकिन जब ये मुझे ऑफिस के लिए करना होता है सुबह सुबह तो जो है मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता है। हाँ जी, आपकी कशिश कुछ ऐसी ही है, अजीब सी। वेलकम जी द टेक्स्ट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर आप जो है मुझे सुन रहे हैं। एंड यार देखो, कितना बढ़िया होना कि अगर कोई हमें सुबह सुबह बता दे कि आपके स्टाइल के हिसाब से, आपके मूड के हिसाब से ये है आज का आउटफिट, ये जो है आप पहन सकते हैं, जिस पर आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो है अमेजिंग कॉमेंट्स मिलने वाले, लाइक्स मिलने वाले, एंड जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपको तारीफ मिलेगी। वैसे इतना तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन एक ऐप है आपके फ़ोन में जो अब आपको ये करके दे सकता है। सो बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अब इतना ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम पे और हर जगह इस चीज़ का यू नो एक एड्स आने लग गए हैं एंड मैंने खुद भी ट्राई किया है, सो इट इज़ रियली वर्किंग फॉर मी। सो आपको क्या करना है कि अपने क्लोजेट को खोलना है, अपनी हर एक यू नो आउटफिट की, हर एक गारमेंट की बेसिकली फ़ोटो खींचनी है, एंड या आपके मूड के हिसाब से, उस दिन के यू नो मौसम के हिसाब से आपको आउटफिट पिक करके देगा, एंड वो भी Pinterest worthy outfit, मतलब आप Pinterest से इंस्पिरेशन लेके एक हफ्ता लगा कर ऐसा आउटफिट जो है क्रिएट करने की कोशिश करेंगी तो भी ऐसा आउटफिट नहीं बन पाएगा, ऐसा जो है इस ऐप के मेकर्स का क्लेम है। वैसे देखिए, किसी ऐप की भी आपको खास ज़रूरत नहीं है, अब आपकी गूगल फोटोज़ जो है वही इंटरनली जो है ये डिसाइड कर सकती है कि ओह अच्छा ये आउटफिट है इनके पास, ये है ये है ये है, सो ये जो है अब आपका एक डिजिटल वार्डरोब अंदर ही अंदर आपके फ़ोन के बना रहे। वैसे इन्हें ये नहीं पता है कि ये जो फोटोज से आप ये देख रहे हैं कि अच्छा इसके पास ये टॉप है, इसके पास ये जीन्स है, इन्हें नहीं पता है कि हम जो है हमारी मम्मी से, अपनी बहन से या अपने दोस्तों से जो है मांग कर भी कपड़े पहन रहे हैं और अमेजिंग वाली फोटोज खिंचा रहे हैं। वैसे मैं हूँ आपकी कशिश, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है उसकी जरूरत है हमें, ये मुझे बताइए 3311106 पर। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो.
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ.
3: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स.
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस.
4: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं.
5: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
6: अरे लुलू का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलू का नहीं आपकी सेविंग का भी है. वेलकम टू द लुलू एनिवर्सरी बोनांजा. सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ. लुलू एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग, ज्यादा सेविंग.
7: लुलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
8: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

मैं आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली स्टोरी जो है वो सुनाने वाली हूँ। हाँ जी, आपकी कशिश हूँ मैं, तो टेक शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है लेकिन मस्ती के, मजे के, तड़के के साथ। 106.3 रेडियो ऑलिव पर आप हमें सुन रहे हैं। एंड यार देखो, मैं आपको जो है एक बहुत ही यू नो पर्सनल चीज़ बताने वाली हूँ, एक इंसिडेंट बताने वाली हूँ बेसिकली। सो हुआ ये कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं जो है अपना आईपैड, अपना जो टैबलेट होता है वो मैं ऑफिस में भूल गई। एंड मेरे रूम पे, यानी जहाँ मैं रहती हूँ इस वक्त कतर में, वहाँ पर मेरे पास टीवी नहीं है। सो मैं जितना भी कंटेंट मुझे अकेले कंज्यूम करना होता है तो वो मैं अपने आईपैड पे कंज्यूम करती हूँ। एंड इसीलिए उसी पर मेरे सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है वो लॉग इन है। एंड जो है मैं अपने फ़ोन पे उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लॉग इन नहीं कर सकती थी, इसीलिए कोई भी पासवर्ड मेरे पास फ़ोन पे नहीं था। सो मैं जब गई एंड मैंने ये रियलाइज़ किया कि अब मेरे पास आईपैड नहीं है, अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि वीकेंड है और मुझे कुछ तो देखना है, बिना कंटेंट के जो है अपने फ़ोन पे कैसे गुजारा करूँगी मैं। तो मैंने जो है एक ऐप देखा, जहाँ पर ऐप के साथ, मतलब इंस्टाग्राम पे ही वो मैंने स्टोरी देखी, माइक्रो ड्रामास बेसिकली। सो उसमें एक स्टोरी चल रही है, पूरे कैरेक्टर्स हैं, एक मूवी की तरह ये चल रहा है, एक सीरियल की तरह चल रहा है, लेकिन मैं उसे रील्स की तरह स्क्रोल कर पा रही हूँ, एपिसोड बाय एपिसोड, रील्स पे एपिसोड हो रहे हैं। एंड वो सच में एडिक्टिव था। मैंने अपने पूरा वीकेंड जो है ना वो सिर्फ यही करने में गुजार दिया। एंड जब मेन एकदम जब पीक पहुंच गया ना कि यार अब तो सस्पेंस बिल्ड हो गया है, तब उन्होंने कहा कि अब आगे देखने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। सो देखो कितना बड़ा मार्केट है ये। उन्होंने मुझे जो है, क्योंकि मेरा अटेंशन स्पैन काफ़ी कम है, उन्होंने मुझे हुक करके रखा स्क्रॉल करने वाले कंटेंट पे, लेकिन स्टोरी वही दिखाई जो मैं बैठकर देखती किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, यू नो लंबे लंबे एपिसोड्स पे। सो देखो यार, ये ब्रिलियंस जो है ये कहां से आ रही है लोगों में, मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये माइक्रो ड्रामास जो है ये काफ़ी अडिक्टिव होते जा रहे हैं। सो अगर आप देखना शुरू कर रहे हैं तो प्लीज़ ये मेक श्योर कीजिएगा, या तो आपने पहले सब्सक्रिप्शन लेके रखा है या तो आप जो भी देख रहे हैं वो फ्री है। मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी आपसे थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। रेडियो ओलिव पर
1: Song of the Year.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन। गराफा शॉपिंग डेज, शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल।
4: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
3: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
4: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी।
3: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट।
5: लुलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

लोग नॉर्मलाइज कर ही रहे थे अकेले बैठ के खाना खाना या कभी खुद के साथ जो है बस एक वॉक पर निकल जाना, तभी जो है इस AI ने जो है एंट्री मार ली एंड हमारे पूरे एस्थेटिक्स जो है वो बर्बाद कर दिए। हाँ जी, आपकी कशिश जो है आ गई है यहाँ पर लेकर द टेक शो 106.3 रेडियो ऑलिव पर। अब मेटा ने जो है आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए एक म्यूज करके जो है एक AI यू नो चार्म जो है उसे अनवील किया है, लॉन्च किया है। ये जो चार्म है ये आपके हथेली यानी आपके पाम के साइज का है एंड आप इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं एंड अपने साथ लेकर घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं एंड रियल टाइम में इससे बातचीत कर सकते हैं। और ये जो AI एजेंट है या आपके लाइफ की छोटी मोटे जो टास्क है उसमें आपकी मदद करेगा, यानी अब आपको अपने फ़ोन को बाहर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो चार्म के तौर पर आपके बैग पर, आपकी घड़ी पर, आपके गले में जो है कहीं भी जहां आपको इस चार्म को रखना है वहां पर आप इसे रख सकते हो एंड इन्जॉय कर सकते हो। बाकी AI जो है अब वो हर वक्त आपके साथ रहेगा। सो वो जो दोस्त कहते थे ना कि भाई तू फिक्र मत कर मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ, तो बस मुझे याद कर और मैं आ जाऊँगा। देखो आपके वो दोस्त जो है अपना प्रॉमिस पूरा करें ना करें AI जरूर करेगा, क्योंकि आप जब भी बुलाएंगे हे म्यूज वो जरूर आएगा। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। दिस इज द टेक्स शो ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव। मैं हूँ आपकी कशिश जियो बिंदास।

0: एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट.
2: बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
3: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
1: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर.
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
1: द एंड वी've बीन वेटिंग फॉर दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर.
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है.
1: Overseas released by Z Studios.

जी, थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी एआई असिस्टेंट म्यूज की, लेकिन अब मेटा जो है उसने ये भी कहा है कि भाई हमारे चश्मे भी आप स्मार्ट ग्लासेस भी लीजिए, लेकिन जिस वीडियो कैमरा से और फोटो कैमरा से आपको प्रॉब्लम थी वो हम हटा के दे सकते हैं आपको। ये कुछ वैसे ही नहीं हो गया जैसे आप पिज्जा में कहते हो ना कि यार मुझे ना हैलपिनो नहीं चाहिए, मुझे आप ऑलिव्स हटा के दे दीजिए प्लीज, तो वो कस्टमाइज आपका पिज्जा बन जाता है ना। बिल्कुल उसी तरह मेटा ने भी अपने ग्लासेस को कस्टमाइज कर दिया है लोगों के हिसाब से, उनकी प्राइवेसी को जो है रिस्पेक्ट करने के लिए। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए द टेक शो लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बातचीत होती है लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, ये जो नया मेटा ने जो है कैमरा फ्री स्मार्ट ग्लास जो है वो लॉन्च किया है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे आपको मेटा असिस्टेंट जो है वो तो इसमें मिलेगा ही, साथ में आप म्यूजिक एंड हैंड्स फ्री कॉल्स भी कर पाओगे एंड लाइव ट्रांसलेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो अगर आप जो है इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, श्रीलंका से, बांग्लादेश से हैं और आप जो है अरबिक में बात अभी तक नहीं कर सकते, सो अब आप ईजिली कतर में जो है वो बातचीत कर पाओगे। बाकी बिल्ट इन स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स हैं एंड सबसे मेजर चीज़ जो नाम में भी इन्होंने डाली है कि नो फोटो और वीडियो कैमरा टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द पीपल। मैं हूं आपकी कशिश, ऐसी और बातचीत टेक्नोलॉजी के चलते होती रहेगी। आप अपनी जो है वॉल्यूम एकदम गाड़ी का रेडियो का बढ़ा के रखिए और स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जियो पिंदार।

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो।
2: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस। शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल।
3: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
2: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
3: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी।
2: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट।
4: To shop.
5: Hi, Radio Olive. Radio Olive 106.3. Listeners. This is Ranveer Singh. Ranveer Singh. Radio. Stay tuned.
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

या देखो मुझे ना फोटो खिंचाने का काफी शौक है, लेकिन जब भी मैं किसी को बोलती हूँ कि यार मेरी अच्छी सी फोटो खींच दो, तो वो जो है कोई बुरी सी फोटो खींच देते हैं और सब कहते हैं कि यार ये जो है सोचो तुम्हारी फोटो कितनी क्लियर आ रही है, कितनी अच्छी आ रही है, पहले के जमाने में तो बिल्कुल अच्छी नहीं आती थी, कैमरे ही अच्छे नहीं होते थे ना। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ द टेक शो, जहाँ टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के और मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार 1826 में, यानी अभी 2026 चल रहा है, ठीक है, सो 1826 में दुनिया की पहली फोटो जो है वो क्लिक करने के लिए 8 घंटे तक लगातार एक्सपोजर जो है उसमें रखना पड़ा था, एंड आज जो है हम मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में जो है फोटो खींच लेते हैं एंड फोटो हमें मिल भी जाती है। सो पहले जैसे हम अभी कोई भी सामान ऑर्डर करने के बाद जो है आधा घंटा या 15 मिनट वेट करते हैं ना, वैसा उससे ज़्यादा वेट जो है अपनी फोटो देखने के लिए करना पड़ता था। मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी यार, मतलब कोई अगर अपने फ़ोन से मेरी फ़ोटो खींचता है और मुझे सेंड नहीं करता है ना, तो मुझे ऐसे कुलबुली से होने लग जाती है कि यार जल्दी भेजो मेरी फ़ोटो। फिलहाल जो है अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जी ओपन दैट।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. फॉर्मल शर्ट लेने का प्लान है और चाहिए प्रीमियम ब्रांड
1: तो नेस्टो गराफा में मिल रहा है जबरदस्त ऑफर. दो शर्ट सिर्फ 59 रियाल में या चार शर्ट जस्ट 99 रियाल में. और हाँ, जहाँ एक शर्ट के लिए आपको 59 रियाल देना पड़ता है वहीं चार शर्ट्स अब सिर्फ 99 रियाल में ओनली विद गराफा शॉपिंग डेज.
0: तो इस वीकेंड अकेले मत जाना, अपने फ्रेंड्स को भी साथ ले जाना. नेस्टो हाइपर मार्केट गराफा. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: अब देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन बहुत ही अमेजिंग सी चीज आज मुझे इंस्टाग्राम से पता चली है। हाँ जी, वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और द टेक शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। तो आज जो आधा खाया हुआ एप्पल जो है आप एप्पल के लोगों में देखते हैं, वो जो है ये तो मतलब थोड़ा ऐसे नया सा लोगो है। जो एप्पल का सबसे पहला लोगो था ना, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसमें एक एप्पल भी नहीं था। उसमें जो है सर आइजैक न्यूटन जो है वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर पर एक सेब जो है वो लटक रहा था, और ये जो है बिल्कुल किसी पुरानी जो है एस्थेटिक सी एंशिएंट सी पेंटिंग की तरह दिखता था। तो सोचो एक लोगो जिसमें एक इंसान पेड़ के नीचे बैठा है और उसके ऊपर सर के ऊपर जो है एप्पल लटक रहा है, ये अगर हम सबके फोन के पीछे बना होता तो कितना फन होता ना यार। आजकल के जो कवर्स हैं वो फोन कवर जो है वो हम ऐसे बनाते हैं। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर अमेजिंग वाले गाने आपके रेडियो सेट पर आ रहे हैं, उन्हें एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

Olive 106.3 FM Gio Bendaz.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मासरती।
2: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मासरती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मासरती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
3: Star Studio 18 and Panorama Studios production presents.
4: मैं बेटे के लिए justice चाहिए।
5: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
3: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
6: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
3: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
6: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
3: Overseas released by Zee Studios.

110111. अब ये देखिए, ये जो है वो कोड लैंग्वेज है जो अक्सर कंप्यूटर यूज करता है इंटरनली बातचीत करने में, यानी कंप्यूटर के जो आपस के जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी लैंग्वेज में बात करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में. मैं हूँ आपकी कशिश, आप मेरे साथ शो एंजॉय कर रहे थे द टेक शो 106.3 रेडियो ऑलिफर. एंड ये जो मैंने कहा इसका मतलब होता है बाय बाय. सो मैं चलती हूँ, आपको टाटा बाय बाय कहकर यहाँ से निकलती हूँ, क्योंकि आपके वीकेंड्स को और ज़्यादा हैप्पी बनाने के लिए मुस्कान हैप्पी वीकेंड लेकर आने वाली आपके रेडियो सेट्स पर. सो वॉल्यूम बढ़ाकर अमेजिंग वाले गाने इंजॉय करते जाओ. आपकी कशिश के साथ जो है बातचीत जारी रखने के लिए कल सुबह 10 बजे जो है हमारी मुलाकात होगी लाइफ मस्त है शो में. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खाना खाते रहो, पानी पीते रहो, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाओ, एंड अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे ना याद करते रहना. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड.

डे है और वीकेंड का मूड है, और अगर आपको समुंदर, यॉट और थोड़ा लग्जरी पसंद है तो कतर में एक इवेंट आने वाला है जहां पर बोट सिर्फ बोट नहीं होगी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। यस, वेरी गुड इवनिंग। सो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले कतर बोट शो की। भाई इतनी चर्चा है इसकी और टाइम अभी काफी बाकी है, अभी तो सेप्टेम्बर चल रहा है, नवम्बर में होने वाला है ओल्ड दोहा पोर्ट में 4th से 7th नवम्बर तक, और टाइमिंग भी नोट कर लीजिए 4th नवम्बर को शाम 4 से 9 बजे तक, और 5th और 6th को 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, और 7 नवंबर को यानी कि चौथे दिन पर फिर वही पुराना टाइम यानी कि 4 से 9 बजे तक। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 50 रियाल से ये स्टार्ट हो रहा है और 4-day pass इसमें होने वाला है इफ़ यू वॉन्ट ऑल 4 days। उसके अलग प्राइजेज हैं, और इवेंट में ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि वाटर स्पॉर्ट्स है, इंटरनेशनल ब्रांड और मरीन टाइम जो है उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन इस इवेंट का एक और एंगल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम में से बहुत लोगों के लिए बोट का मतलब होता है चलो एक दिन बोट राइड करते हैं, लेकिन यॉच वर्ल्ड में बोट एक पूरा लाइफस्टाइल है, यू नो, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, फूड, एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक साथ। और कतर की मैरीटाइम जो है आइडेंटिटी भी काफ़ी पुरानी है, मतलब समुंदर वही है बस कहानी अपग्रेड हो गई है। सो आपसे एक सवाल है, अगर आपको अनलिमिटेड बजट के साथ चॉइस मिले लग्जरी यॉच लेने की या फिर बीच फ्रंट विला लेने की, तो आप क्या लोगे? मतलब मेरे मन में ऐसे एक सवाल आ गया। सो यू टेल मी, व्हाट्सएप करके बताइए 3311063 पर। वैसे वीकेंड पे सपने देखना बुरी बात नहीं होती। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सो आज के शो में एक ऐसा इवेंट है जिसके नाम में ही हैप्पीनेस है. इंटरनेशनल आइसक्रीम शो आ रहा है मॉल ऑफ कतर के जो स्टेज है उस पर. डेट्स जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और मुझे लग रहा है 3rd of October तक चलने वाला है. और हर दिन 3 शो होने वाले हैं, शाम 4:30 बजे, फिर 6 बजे और 7:30 बजे. यानी फैमिली के साथ जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ और आइसक्रीम को सिर्फ खाओ नहीं, उसका साइंस भी देखो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड्स. भाई फ्राइडे का दिन और आपको मैं बताऊं कि कहां पर क्या क्या चल रहा है, ये ना हो ऐसा कैसे हो सकता है. सो इवेंट में इंटरैक्टिव साइंस एक्सपेरिमेंट्स हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस हैं, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स और आइसक्रीम चैलेंजेस होने वाले हैं. और सबसे फन पार्ट पता है क्या है, मॉल ऑफ कतर के 11 आइसक्रीम ब्रांड्स जो हैं वो चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मतलब इसमें बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो वन ऑफ योर फेवरेट ब्रांड्स में से एक होंगे. सो आप फेवरेट ब्रांड को वोट कर सकते हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक. अब 17 तो निकल गया है बट अभी 2 अक्टूबर आने में टाइम है, तो अभी आप आराम से वोट कर सकते हो. टॉप 5 ब्रांड्स नेक्स्ट स्टेज में आएंगे और एक लकी वोटर को विनिंग ब्रांड के साथ 10 फ्री आइसक्रीम भी मिलेंगी. और यहां पर है मेरा असली सवाल, आइसक्रीम के लिए लॉयल्टी कितनी स्ट्रांग है आपकी, ये आप मुझे बताओगे. वैसे चॉकलेट वाले चॉकलेट के साथ चीट करेंगे या पिस्टैचियो वाले कभी फ्लेवर चेंज करेंगे, ये सब तो वहीं पे पता चलेगा. लेकिन आप मुझे बताइए कि आपका अल्टीमेट फेवरेट जो यू नो आइसक्रीम है वो कौन सा है. बाय द वे मेरा तो चेंज होता रहता है, लेकिन हाँ वन टाइम अगर मैं बात करूं कि बिना सोचे समझे कुछ लेना है तो दैट्स ऑफ कोर्स चॉकलेट आइसक्रीम. आप मुझे बताइए, वो लोग बहुत डेंजरस लगते हैं मुझे जो कहते हैं ना कि यार सब चलेगा कोई भी ले लो, भाई उनके साथ मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती. यू टेल मी योर फेवरेट आइसक्रीम 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो.
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस.
3: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं.
4: अरे क्या हुआ इतनी खुशी किस बात की?
5: अरे लुलू का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलू का नहीं आपकी सेविंग का भी है. वेलकम टू द लुलू एनिवर्सरी बोनांजा. सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस. फ्रेश ग्रोसरी इलेक्ट्रॉनिक्स होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ. लुलू एनिवर्सरी बोनांजा. ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स.
6: लुलू, where the world comes to shop.

0: ஓ பாட்டு தான் தூடா.
1: एक सवाल है आपसे, अगर मैं आपको ये इमोजी भेजूं, मतलब ऐसे रोने वाला, क्या आप समझेंगे कि मैं रो रही हूँ, दुखी हूँ, या फिर आप कहोगे कि यार ये तो बहुत फनी था? इंटरनेट की लैंग्वेज कितनी इंटरेस्टिंग हो गई है. गूगल के 2025 जो बोर्ड है, जी बोर्ड है, उसके डेटा के अकॉर्डिंग लाउडली क्राइंग फेस जो है वो दुनिया का मोस्ट यूज इमोजी था. और इसका जो यूज़ है सिर्फ सैडनेस के लिए नहीं, बल्कि लाफ्टर, एक्साइटमेंट, डिसबिलीव और अफेक्शन और इमोशनल ओवरलोड के लिए भी किया गया है. मतलब पहले हम वो हंसते हुए जो आंसू निकलते थे ना इमोजी के, वो काम करते थे. अब मतलब इतना फनी हो गया है कि अब जेन ज़ी बोलते हैं कि वो जो लाउडली रोने वाला इमोजी है, जिसमें बकायदा इमोजी रो रहा है, वो यू नो सेंड करते हैं ये लोग. सो इमोजी एक्चुअली एक मिनी लैंग्वेज बन चुका है. एक दिल आपका यू नो सारा रिप्लाई दे देता है, एक थम्स अप आपको अलग टोन में लेकर जाता है, और ओके का टोन एकदम अलग है. सो आप मुझे बताइए कि आपका मोस्ट फेवरेट इमोजी कौन सा है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. फटाफट से इमोजी भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: दोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
2: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
3: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
1: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
1: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
4: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
1: Overseas release by Zee Studios.
5: Radio Olive par aane wala gaana Cool Song of the Hour.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन। गराफा शॉपिंग डेज।
4: रेडी टू लर्न, टू प्ले,
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
4: मिल्क, चीज, योगर्ट, लेबनी एग,
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली।

इंस्टाग्राम पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रहा है. हाउ इज जेन ज़ी सडनली सो रिच? क्योंकि एक तरफ हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते और दूसरी तरफ प्रीमियम कॉफी, स्नीकर्स, कॉन्सर्ट के टिकट्स, वेलनेस मेंबरशिप, वीकेंड के ट्रिप्स और फैंसी रेस्टोरेंट, ये सब तो इनकी लिस्ट में बिल्कुल परमानेंट है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स. वैसे रीसेंट कंज्यूमर रिसर्च में एक्सपीरियंस की तरफ स्पेंडिंग शिफ्ट दिख रहा है. सो अगर आप देखोगे ये जो बुकिंग वाले एप्लीकेशंस होते हैं, इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग 78% इंडियन कंज्यूमर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस को फिजिकल प्रोडक्ट से प्रेफर करते हैं और जेन ज़ी इमर्सिव मेमोरी मेकिंग एक्सपीरियंस पर ज़्यादा स्पेंड करने वाली जनरेशन के रूप में इमर्ज हो रही है. इस इफेक्ट को कहते हैं लिपस्टिक इफेक्ट. मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते जैसे कि घर या गाड़ी, वो लोग इन सब लग्जरी चीज़ों में अपना टाइम और मनी मतलब डालते हैं सो दैट उनको अच्छा फील हो, पर्सनल स्टोरी वर्थ और ये सब चीज़ें. पहले लग्जरी का मतलब क्या होता था, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि आप कितना ट्रैवल करते हो, आप कितना स्पा एक्सपीरियंस करते हो या कितने स्पेशल डिनर्स पर जाते हो या कोई ऐसा वीकेंड जो आपने बहुत ही लग्जरी तरीके से स्पेंड किया है, डिज़ाइनर बैग, बिजनेस क्लास टिकट्स या बिना अलार्म के पूरी सुबह सोना. दिस इज एक्सपीरियंस्ड बाय जेन ज़ी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. बाय द वे, यू टेल मी कि आपके लिए लग्जरी क्या है? कोई ट्रैवल, कोई कॉन्सर्ट या अपना घर खरीदना या फिर अपनी गाड़ी खरीदना? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

एक लाइन है जो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है, क्लीनिंग एंड कुकिंग आर नॉट वुमेन्स वर्क, दे आर बेसिक एडल्टिंग। और ये बिल्कुल सच बात है। कतर में मैंने अपने कितने सारे ऐसे दोस्तों को देखा है जो अकेले रहते हैं और सारा काम खुद से करते हैं, डजंट मैटर कि वो लड़की है या लड़का। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल अपॉन 6.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है यस हैप्पी वीकेंड्स। ये स्टेटमेंट प्रियंका चोपड़ा ने दिया था और उन्होंने हाउस होल्ड चोर्स को जेंडर से अलग करके बेसिक लाइफ स्किल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। और ये बिल्कुल सच बात है। और ऑनेस्टली इस टॉपिक को डिबेट बनाने से पहले एक सिंपल सवाल आपसे पूछ रही हूँ, घर का काम एक्चुअली होता क्या है? कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, ग्रॉसरी शॉपिंग, बिल्स या फिर बच्चों का काम, ठीक है, यही सब होता है। अब घर एक मतलब अगर एक घर में दो अडल्ट्स काम करते हैं तो घर का काम भी मतलब ऐसे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह हो जाता है। लेकिन फनी पार्ट ये है कि घर में कभी कभी काम से ज़्यादा डिबेट होती है, तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, लेकिन मैंने तो ये कल किया था। लेकिन मैं अब आपको बताती हूँ कि एक पर्सनल चीज़ है जो मुझे लगता है फील होती है कि बस साइलेंटली सब कुछ कर देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बस थोड़ा सा भी काम करके बहुत सुनाते हैं। पर जो लोग खुद का काम खुद करते हैं ना, उनको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक बार करके देखिएगा। सो आपके घर में कौन है जो कहता है कि मैंने सब किया, और कौन है जो चुपचाप सारा काम करके निकल जाता है? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, ये है हैप्पी वीकेंड्स, नंबर है 3311063, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। अब सुनिए।

फैशन लवर्स, कल मिलान में फैशन की दुनिया का एक बड़ा इवेंट हुआ, ठीक है, वोग वर्ल्ड मिलानो 2026, मतलब पूरे दो तीन दिन से चल ही रहा था। सो मिलान फैशन वीक के फर्स्ट डे पर हिस्ट्री जो थी वो देखी गई, हिस्टोरिक चीज़ें हुई। वोग वर्ल्ड का 5th एडिशन हुआ और ये ऑर्डिनरी फैशन शो नहीं था। इस बार थीम थी इटालियन क्राफ्टमैनशिप, हेरिटेज और इनोवेशन। शो का मतलब अगर शो को देखा जाए तो डिफरेंट एक्ट्स में डिवाइड किया गया था और उसके बाद क्राफ्टमैनशिप से लेकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मेड इन इटली और टेक्नोलॉजी और फ्यूचर फेसिंग फैशन तक, मतलब हर चीज पर अलग अलग थीम थी और देखा गया। और मुझे फैशन की दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। पहले फैशन शो में मॉडल्स, रनवे और कपड़े होते थे, अब फैशन शो का मतलब होता है म्यूजिक, थिएटर, टेक्नोलॉजी, सिनेमा, कल्चर, हिस्ट्री, सब कुछ मतलब एक फैशन शो में डाला जाता है। और फैशन ना अब सिर्फ क्या पहना तक नहीं रह गया, इट बिकम्स लाइक क्या स्टोरी बन रही है इस कपड़े के पीछे, इस एम्ब्रॉयडरी के पीछे, ये आया कहाँ से, कितने साल पुराना है, कैसे बनता है, ये सब चीज़ें हर कोई जानना चाहता है। सो आपको चांस मिले अपनी लाइफ का वोग मोमेंट क्रिएट करने का, तो आपको अपना एंट्री सॉन्ग जो है वो कौन सा रखने का मन करेगा बता सकते हो आप मुझे। आई कैन प्ले फॉर यू। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Star Studio 18 and Panorama Studios Production presents.
2: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
3: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
1: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
1: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
1: Overseas released by Zee Studios.

वर्सेस फॉर बुक लवर्स, एक बड़ा सवाल, आपने कभी बुक पढ़ी है और कैरेक्टर का फेस अपने दिमाग में ऑलरेडी बना लिया है? ऑफ कोर्स बनाया होगा। फिर मूवी बनाई और फिर आप बोले कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल नहीं। आली हेजलवुड की बेस्ट सेलिंग रोमांस नॉवल द लव हाइपोथेसिस की फिल्म जो है वो इसी हफ्ते जो है अमेजोन प्राइम पर आ चुकी है। सो अगर आपने किताब पढ़ी है देन आप रिलेट कर पाओगे इस मूवी से, और अगर नहीं पढ़ी है तो भी आपको ये जरूर देखनी चाहिए। सो आई विल से कि फिल्म का एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि ऑलिव एक वुमेन इन स्टेम है, मतलब एक्चुअली इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उसमें से एक का नाम है ऑलिव। फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यू नो रिलेट कर पाओगे, स्पेशली साइंस और एकेडमिया में वुमेन की विजिबिलिटी को लेकर। सो रोमांस के साथ थोड़ा इंटेलेक्चुअल एंगल अगर आपको पसंद है देन यू विल लव दिस मूवी। और बुक पहले पढ़ना पसंद है आपको या मूवी देखना, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बुक अगर आपने पढ़ ली है तो आप मूवी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको लगेगा ये बुक में तो नहीं था या बुक में तो ऐसा अलग हुआ था, पर अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है देन यू कैन वॉच दिस मूवी डायरेक्टली बिना किताब पढ़े अमेजन प्राइम पे। सो आई विल से कि देखते वक्त एक सेंटेंस ऑलमोस्ट गारंटेड है, आप कहोगे कि मेरे इमेजिनेशन में तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं था, अगर आपने किताब पढ़ी है तो। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत.
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर. नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा. कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी. सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज.

यार ये बोलते हुए बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है कि एज के साथ साथ हमारी जो सोच है वो भी बदलती रहती है। यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। सो आज फ्राइडे है एंड फ्राइडे का मतलब होता है या तो ग्रॉसरी शॉपिंग करना, दोस्तों से मिलना और अपने लिए टाइम निकालना, किसी पार्लर में सलून में जाके आराम से अपने हफ्ते भर की सारी चीज़ें तैयार करवाना, और यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत पसंद आती हैं। और ऑनेस्टली ग्रोइंग अप का सबसे फनी पार्ट पता है क्या है कि 18 की एज पर आपको लगता है कि मुझे तो सब पता है, 25 तक आके लगता है कि ओके मे बी हो सकता है कि नहीं हो ऐसा, और 30 पर लगता है कि अच्छा किसी को भी नहीं पता। हम ना मतलब धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन समझने लगते हैं, जैसे एक एज पर पहुंचते हैं मैनुअली, मतलब हमें लगता है कि ये हो ही जाएगा, करियर कैसे हैंडल करें, रिलेशनशिप कैसे हैंडल करें, पैसे को कैसे मैनेज करना है, लेकिन ऐसा कोई मैनुअल नहीं आता जो हमें सब सिखा दे। हम सब बेसिकली ट्रायल वर्जन में चल रहे होते हैं, मतलब खुद सीखते हैं, खुद गलतियां करते हैं और खुद सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, जब आप अपने 18 ईयर वाले ओल्ड सेल्फ में थे तो आपको क्या लगता था कि आप कैसे करोगे सारी चीज़ें और क्या किस चीज़ को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान और नंबर है 3311106। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: अगर आपको मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ना पसंद है तो आप एक नाम नोटिस कर लीजिए, वी चेज शैडोज। रिचर्ड की ये किताब है, इसी महीने रिलीज हुई है और ये लेटेस्ट सीरीज है मिस्ट्री की। स्टोरी ग्लोबल जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर बेस्ड है, जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस जो है वो सॉल्व करने का मौका मिलता है। और मिस्ट्री बुक की सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, वो पता है क्या होता है? क्वेश्चन होता है, आखिर सच क्या है? आप लास्ट तक ना यही सोचते रहते हो। सुन रहे हैं आप रेडियो 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। भाई मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हर दिन एक किताब खत्म कर देते हैं। कल ही मैं एक लड़की से मिली थी जो अपने लेट 30s और स्टार्टिंग 40s की एज में थी। शी इज़ फ्री फ्रॉम एवरीथिंग कि भाई घर में ज़्यादा चीज़ें नहीं है करने के लिए, अभी शी इज़ ऑन ब्रेक कि अभी काम भी नहीं कर रही है कोई। सो शी लाइक्स टू रीड, ठीक है। और मुझे लगा कि यार ये कितनी अच्छी आदत है, जब आपके पास टाइम है तो आप बहुत कुछ पढ़ रहे हो। मतलब व्हेन शी इज़ इवन इन कैब और ट्रैवल कर रही है तो वो 30-40 मिनट भी किताब पढ़ रही है। एंड आई वॉज लाइक, कैसे, कितनी किताबें पढ़ते हो आप? तो उसने बोला मैं हर दिन एक किताब ख़त्म कर देती हूँ। सोचिए कि ये भी एक लेवल है किताब पढ़ने का। सो सबसे मज़ेदार मोमेंट अगर मैं मिस्ट्री किताबों की बात करूँ तो कल्प्रिट पकड़ लिया ये नहीं होता। एक्चुअली बात ये होती है कि आप लास्ट तक ना उस फिक्शन में बने रहते हो और आपको लगता है कि क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होते हैं, हिडन आइडेंटिटी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पढ़ के बहुत मज़ा आता है। सो यू टेल मी कि आपको किताबों में कौन सी किताबें सबसे ज़्यादा पसंद है, मिस्ट्री वाली या फिर सेल्फ हेल्प बुक या फिर लव स्टोरीज या फिर रोम कॉम, क्या पसंद है बताइए मुझे। रेडियो ऑलिव पर नंबर है 3311063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: सो फैशन का ना एक रूल है कि आप किसी ट्रेंड को ऐसे परमानेंटली मत समझना कि ये खत्म हो गया। मतलब बहुत बार चीजें आएंगी और जाएंगी, किसी ट्रेंड के साथ आप ये तो बिल्कुल समझिए मत, क्योंकि जो चीज कल आउटडेटेड थी आज विंटेज हो सकती है। और 2026 में 80s इंस्पायर्ड स्नीकर्स फिर से फैशन कॉन्वर्सेशन में है। सो वोग इंडिया ने भी 80s स्नीकर्स के कमबैक को हाईलाइट किया है। कलरफुल डिजाइंस, बोल्ड डिटेल्स और वो यू नो टाइट सी जो जीन्स होती हैं उनके साथ स्टाइलिंग की है उसकी। मतलब नॉट जस्ट स्किन फिट जीन्स, बस वो एक जो स्ट्रेट फिट वाला जीन्स होता है उसके साथ। और ब्रिटिश वोग ने भी 80s इंस्पायर्ड फुटवेयर ट्रेंड को कमबैक का कवर दिया है। और अब तो क्लासिक स्नीकर जो हैं उनको लग्जरी फैशन में थोड़ा सा ना इसे इंक्लूड किया जा रहा है। मतलब फैशन बोल रहा है कि पुराना है तो क्या हुआ, कूल तो है। और ये जो इंस्टाग्राम पे 80s वाला ट्रेंड चला था ना, उसके बाद मुझे लगता है कि हर कोई 80s की बात कर रहा है। हम फैशन में बार बार पोस्ट में लौटते हैं और जाते हैं कि यार ये कितना अच्छा था, ये स्नीकर्स देखो, ये स्कूल की याद दिला देते हैं, ये जैकेट देखो, ये कॉलेज की याद दिला देता है, एक परफ्यूम है जो पर्टिकुलर किसी पर्सन की याद दिलाता है। सो आपके वार्डरोब में वो कौन सी ऐसी ओल्ड स्कूल चीज़ है जो आप कभी भी अपने पास से दूर नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि नहीं यार ये कभी ना कभी तो काम आएगी और अच्छी लगेगी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज बी मुस्कान विद यू और ये है हैप्पी वीकेंड्स।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं.
2: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं, आपकी सेविंग का भी है. वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा. सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ. लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग, ज्यादा सेविंग.

0: फ्राइडे आते ही ना सबसे पहले सवाल आता है मन में कि वीकेंड का क्या प्लान है, और मेरे मन में तो ये फ्राइडे के लिए नहीं थर्सडे की शाम को ही आ जाता है। कल शाम को ही बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, यू नो, इससे मिल रहा है, उससे मिल रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, और अगर आप बोल दो कि नथिंग, सामने वाला तुरंत बोलता है कि नथिंग, जैसे वीकेंड में कुछ नहीं हो तो वीकेंड वेस्ट हो गया। प्लान होना चाहिए, चाहे वो डिनर हो, मूवी हो, शॉपिंग हो, दोस्तों के साथ जाना हो, बीच पे जाना हो, जिम जाना हो। मतलब कई कई लोग तो सिर्फ वीकेंड पे ही एक्सरसाइज कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार फ्राइडे सैटरडे इज ऑल अबाउट योर सेल्फ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है यस हैप्पी वीकेंड्स। लेकिन कभी कभी ऑनेस्टली कुछ नहीं करना भी प्लान हो सकता है। लोग थर्सडे को अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं और फ्राइडे ना पूरा टाइम आराम करते हैं। अलार्म नहीं लगाना, फोन को साइलेंट कर देना, बेड पे लेटे रहना, चाय बनाना, एक मूवी लगाना, और सबसे इंपॉर्टेंट खाना बाहर से ऑर्डर करके खा लेना। किसी को एक्सप्लेन नहीं करना कि आप क्या कर रहे हो। हमने ना प्रोडक्टिविटी को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि रेस्ट भी मतलब गिल्ट जैसा फील होता है समटाइम्स। तो मैं तो अब मतलब उसको गिल्ट की तरह नहीं समझती, वो मेरे लिए एक रिचार्ज की तरह है। सो वीकेंड का एक हिस्सा बस यू नो आपके साथ रहना चाहिए। आपका परफेक्ट फ्राइडे क्या होता है, फुल सोशल लाइफ या फिर फूड एंड सोफा वाली लाइफ? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। नंबर इज सेम 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: आज तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में, तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: Ab suniye, Olive ka zabardast hai.

0: So this is the time when I have to say कि यहाँ पे शो को wrap up करना पड़ेगा. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is the time when I have to say कि भाई अब super hit गानों के साथ अब Radio Olive पर enjoy करने वाले हैं और मेरे हो गया है जाने का time. So Friday आते ही दुनिया में ना कुछ fixed characters active हो जाते हैं. जैसे कि character number one, the planners. मतलब Friday morning guys, यहाँ पे ये dinner है, ये movie है और उसके बाद हम मीठा खाने के लिए यहाँ पे जाने वाले हैं और Google calendar भी शर्मा जाए कि यार character number two की बात करते हैं, the social butterfly. फ्लाइज कौन फ्री है, बस एक वीकेंड में चार ग्रुप्स से मिलना है. और कैरेक्टर नंबर थ्री पता है क्या होता है, द होम पार्टी. मतलब फ्राइडे आफ्टरनून से ही प्लीज मुझे कहीं मत बुलाना वाले लोग, ठीक है, उनको बस घर पे खाना चाहिए, ओटीटी मूवीज चाहिए, बस. कैरेक्टर नंबर फोर, द देखेंगे पर्सन. वीकेंड का क्या प्लान है, देखेंगे. सैटरडे अब क्या करें, मतलब देखेंगे. संडे इवनिंग आते आते उनको लगता है कि यार वीकेंड खत्म हो गया, काम चालू हो गया और अभी तक कुछ किया भी नहीं. और सबसे फनी बात, एक ही इंसान हर वीकेंड डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकता है, कभी पार्टी वाला, कभी फैमिली वाला, कभी मूवी वाला, तो कभी बस शांति से रहने वाला. सो आज आप मुझे बताइए कि फ्राइडे पर्सनालिटी आप कौन सी है, प्लानर वाले, सोशल बटरफ्लाइज, या फिर होम बडी, या फिर देखेंगे पर्सन. और हाँ, अगर आप इनमें से कोई भी हैं तो मुझे व्हाट्सएप करना मत भूलेगा. 3311063 इज माई नंबर. बाय द वे, आई एम द वन जो हर हफ्ते बदलता है. मतलब कभी मुझे लगता है कि यार प्लानर बन जाते हैं, कुछ घूमते हैं फिरते हैं, कुछ करते हैं, कभी सोशल बटरफ्लाई तो कभी होम बडी. बाय द वे, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव सुपर हिट गानों के साथ. अभी आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास एंड हैप्पी फ्राइडे.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

0: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
1: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
2: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग।
3: लुलु, where the world comes to shop.
4: Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.
5: This is Club Olive. 106.3 FM.

0: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
1: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
2: अरे लुलू का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलू का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलू एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलू एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स।
3: लुलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
4: Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: FM.
1: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ रेडियो ओलिव।

106.3 FM. You're listening to Club Olive.

Listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.